0: ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू, अरे लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधु, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार।

0: मियाँ, इन लकड़ियों की क्या कीमत है?
1: इनकी कीमत हम मियाँ बीवी का एक वक्त का खाना।
0: तो लो, ये तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी के लिए काफी है, मंजूर है ना?
1: जी हाँ।
0: आओ ले आओ।
1: चलिए।

इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चल देते हैं। आज जिसका शोक कर रहे हैं उसे तो नया जीवन भी मिल गया होगा। यही रीत है इस संसार की।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। होफदोर्फ से परिवार बास गीत लक्ष्मण बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 85 साल की आयु में फैफन तख्त यार और पत्नी श्रीमती लीन बासगीत का पति लड़कन मोनिक एस्टर और एरिक के पिता अनिल और लियोंटिन के ससुर एंजेलिना रायन शेरेसा जेडन मैक्स और लेनक्स के नाना और आजा होफदोर्प मानन बर्ग द्रीव का रहने वाला श्रीमान रोनाल्ड हेनरी लक्ष्मण की मृत्यु हालम के स्पार्न खस्टहाउस में हो गई है। लोग इन्हें रोनाल्ड के नाम से पहचानते और पुकारते थे। होफदोर्प से परिवार बासगीत लक्ष्मण बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शनिचर को 85 साल की आयु में फैफन तख्त यार औद पत्नी श्रीमती लीन बासगीत का पति लड़कन मोनिक एस्टर और एरिक के पिता अनिल और लियोंटिन के ससुर एंजेलिना रायन शेरेसा जेडन मैक्स और लेनक्स के नाना और आजा होफदोर्प मानन बर्ग द्वीप का रहने वाला श्रीमान रोनाल्ड हेनरी लक्ष्मण की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्टहाउस में हो गई है। रोनाल्ड के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल मंगलवार के रात में 6:30 से 7:15 तक। Morgen dinsdagavond van 6:30 tot 7:15. Uitvaartcentrum Haarlemmermeerke Moerdalei, Hoofdweg Oostzijde, 1100 Nieuw-Vennep mee. Aur Arthi ke dagkriya, aane wale bife ke din mein 11:30 donderdag aanstaande, 11:30 kiye jayenge Crematorium Kennemerland, Vergierdeweg 271 Haarlem mee. और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-46-33-58-02। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार लक्ष्मण और परिवार बासगीत के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में सुनिए अम्स्टल फेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल के आयु में निखन जीवन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रोह का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा इपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खिलावन की मृत्यु लेचखंदाम में हो गई है। अम्स्टलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए मंगलवार को 79 साल के आयु में निखन जीवन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रोह का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा ईपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खिलावन की मृत्यु लेचखंदाम में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के शाम में 4:15 बजे मोरखन दिन में दखवर्त और फरफीर किए जाएंगे। क्रीमटोरियम एकलनबर्ग लान जीवन रेसवेक में सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार राम खिलावन और परिवार जियावन के दुख में शामिल।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो Ujala Radio. Ujala सोना चिड़िया.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

नम्र संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया सुन वालों, आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो और ये रहा अगला नंबर।
1: मुकेश जी की आवाज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी आवाज की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भाला आदमी गा रहा है, और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे, लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए। कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

वेलकम है हजरत, भूल के गोले उबम, रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। होफ दौरब से परिवार बास गीत लक्ष्मण बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 85 साल की आयु में फैफन तख्त यार और पत्नी श्रीमती लीन बास गीत का पति लड़कन मोनिक एस्टर और एरिक के पिता अनिल और लियोन्टिन के ससुर अंजेलिना रायन शेरेसा जेडन मैक्स और लेनक्स के नाना और आजा होफडोर्प मानन बर्ग द्रीव का रहने वाला श्रीमान रोनाल्ड हेनरी लक्ष्मण की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न गेस्टहाउस में हो गई है। लोग इन्हें रोनाल्ड के नाम से पहचानते और पुकारते थे। होफडोर्प से परिवार बास गीत लक्ष्मण बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शनिचर को 85 साल की आयु में फैफन तख्त यार और पत्नी श्रीमती लीन बास गीत का पति लड़कन मोनिक एस्टर और एरिक के पिता अनिल और लियोन्टिन के ससुर अंजेलिना रायन शेरेसा जेडन मैक्स और लेनक्स के नाना और आजा होफडोर्प मानन बर्ग द्वीप का रहने वाला श्रीमान रोनाल्ड हेनरी लक्ष्मण की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न गेस्टहाउस इकनहाउस में हो गई है। रोनाल्ड के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल मंगलवार के रात में 6:30 से 7:15 तक। Morgen dinsdagavond van 6:30 tot 7:15. Uitvaartcentrum Haarlemmermeerke Moerdalei, Hoofdweg Oostzijde, 1100 Nieuw-Vennep mee. Aur Arthi ke dagkriya, aane wale bife ke din mein 11:30 donderdag aanstaande, 11:30 kiye jayenge Crematorium Kennemerland, Vergierdeweg 271 Haarlem mee. और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-46-33-58-02 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार लक्ष्मण और परिवार बांसगीत के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार मथुरा बिंदे श्री सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्तखियार और लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील के माँ अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंजेली फोफ्रावास्ट हाउस में हो गई है। स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा जो थी अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार मथुरा बिंदे श्री सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्तखियार औत लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील के माँ अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु ओंजेली फोफ्रावास्ट हाउस वेस्ट में हो गई है जो कि स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा थी। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक वूंसदाफन फन जीफन तोत आख्तूर Uitvaart Centrum Westgaarde ke Moerdalé, ook Meerweg 275 Amsterdam Oostdorp me, aur arthie ke dahkriya, aane wale shukrawar din me 3 baje, vrijdag aanstaande 3 uur kiye jayenge Westgaarde Crematorium, ook Meerweg 275 Amsterdam Oostdorp me.

0: जागीर नहीं।
1: और मृत्यु समाचार सुनिए, अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से समस्त परिवार बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयंतख्तियार औत स्वर्गीय पिता श्री मणिराम बिंदेसरी सिंह और स्वर्गीय माँ श्री साम्राजी दर्शन के बेटी सोनी आंद्रे राज बेनी एरिक किशोर रोसिल मीला आईफी रॉय और स्वर्गीय क्रिस के बहन सात भौजी के ननद दो छोटकू के बड़की और सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु वेस्ट में हो गई है। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से समस्त परिवार बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेयंतख्तियार औत स्वर्गीय पिता श्री मणिराम बिंदेसरी सिंह और स्वर्गीय माँ श्री साम्राजी दर्शन के बेटी सोनी आंद्रे राज बेनी एरिक किशोर रोसिल मीला आईफी रॉय और स्वर्गीय क्रिस के बहन सात भौजी के ननद दो छोटकू के बड़की सभी लड़कन के फूआ मौसी नानी और आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु वेस्ट में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले बुध रात के 7 बजे से 8 बजे तक अयोतफार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार दिन में 3 बजे फ्रेडा खानस्तांद द्री उर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम वेस्खार्ड ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर अयतफार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार मथुरा और परिवार बिंदेसरी सिंह के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: वेल वेल वेल, यू लिसनर उजाला रेडियो एंड एक बेन सुभाष हेयर फेल लास्टर प्लेसिर।

खुश करने के लिए उजाला रेडियो है 24/7 और वो भी स्पेशल स्पेशल आपके लिए।

ये उजाला रेडियो है आपका सबसे पसंदीदा रेडियो स्टेशन। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार। मुझे एहसास है आप इस घड़ी को बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे, क्योंकि संगीत जो हम सुनवाएंगे इसकी खुशबू से मन महक उठेगा। मैं हूँ आपका हम सफ़र निशा। शुरू करती हूँ ये दुआ से। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, हार्ट जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले। ऐ मालिक कायनात, सुबह होते ही मेरे अजीज़ों की दिली मुरादें, ख्वाहिशें, उम्मीदें पूरी फरमा। उसकी सेहत, मोहब्बत, शफ़क़त, रहमत, रज़क अता फरमा। उनको हर दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियों से महफूज फरमा। या रसूल खुदा, आसरा दीजिए।

नाते नबी आपने अभी कव्वाल मोहम्मद शफी नियाज़ी से सुना। कलाम था अनवर फरूख आबादी का। अब हम आपके खिदमत में मेरा भजन सुनवाएंगे। बोल है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।

मेरा भजन आपने अभी वनी जयराम और दिनकर कैकनी की आवाजों में सुना। संगीत रचना महान सितार वादक पंडित रविशंकर का था। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपको कई शैलियों में गाने सुनने को मिलते हैं। हमने गजलें चुने हैं सुनवाने के लिए। उम्मीद है कि आप इन गजलों से लुत्फ उठाएंगे। पहली गजल पेश है, पर इससे पहले शेर अर्ज है। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। करूँ न याद मगर किस तरह भुलाऊँ उसे।

शायराना अंदाज में पेश थी ये गज़ल कलाम था शायर अहमद फराज का और उस्ताद गुलाम अली की मौसिकी थी। मोहब्बत, मोहब्बत एक एहसास है गहरा सा, दिल से दिल तक का सफ़र है प्यारा सा। जो समझ ले इस रिश्ते की ताकत को, उसके लिए ज़िंदगी है एक उजाला सा। तुम जो पास आ गए है, जो शर्मा गए, राज़े दिल पा गए।

रोमानियत अंदाज में पेश थी ये गज़ल मौसिकी अनु मलिक की थी, कलाम शायर जावेद अख्तर का था। एकदम एकदम भी जिसे दिल से भुलाया ना गया, वो करीब आया तो उसे सीने से लगाया ना गया। अजनबी बन के सरे राह मिले हैं मुझसे, जिनकी दीवार का सर से मेरे साया ना गया। हमसे आया ना गया, तुमसे भुलाया ना गया, फासले प्यार में दोनों से मिटाया ना गया।

शायराना अंदाज में पेश थी ये गजल मदन मोहन की मौसिकी थी, कलाम था शायर राजेंद्र कृष्ण का। अब हम आपको सुनहरी दौर के कुछ सुनी कुछ अनसुनी गाने सुनवाएंगे, जैसे कि ये गीत।

अमर गीत पेश था राजकुमारी और लता मंगेशकर की आवाजों में। श्याम सुंदर का संगीत रचना था और तर्ज को लिखने वाले थे शायर कमर जलाल आबादी। यूं तो खामोश ही रहती है आंखें, अगर समझ सको तो बहुत कुछ कहती है आंखें। कौन कहता है कि रोती है आंखें। रोता तो दिल है मगर बहती है आंखें।

को जलाए सताए दुखाए, श्री रामचंद्र संगीत से सवारे थे, बोल था शायर पे संतोषी का। उधर तुम हसी हो इधर दिल जवा, सुनाएंगे शहद भरी आवाजों में मोहम्मद रफी साहेब और

सदाबहार डोगाना पेश था संगीतकार ओपेन नैयर का संगीत रचना, गीत रचना था शायर मजरू सुल्तानपुरी का। अब लीजिए पेश है मौसिकार वसंत देसाई की मौसिकी और शायर गुलजार का कलामे ये नगमा।

अनमोल नगमा पेश था वनी जयराम की मीठी सुर में। अब मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम मिलकर क्या सुनाएंगे, लीजिए पेश है।

0: पुरानी
1: अजी ना ना ना करो जी करो हाँ मेरा दिल ना जलाओ मेरी जान
0: ओ मैं तो ना ना ना कर...

0: करो हाँ
1: करुणा
0: करो हाँ
1: करुणा
0: करो हाँ
1: ना
0: हाँ
1: ना
0: हाँ
2: खूबसूरत अंदाज में पेश था ये डुएट। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजर कर पत्थर हो जाता है ना, तो दिल दुखा भी दे तो उसे बुरा नहीं लगता।

0: जिंदगी गाती है ला ला ला ला ला। प्यार की धुन पर छेड़ के नगमा सबको नाच नचाती है। सुनो जिंदगी गाती है।
1: शोखी आवाज में पेश था ये गीत, आवाज थी आशा भोसले की। अगला गीत पेश है, गाने वाले हैं मुकेश जी।

उजाला रेडियो का पसंदीदा प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। ये जिंदगी तेरे साथ हो, ये आरजू दिन रात हो, मैं तेरे संग संग चलूं, तू हर सफर में मेरे साथ रहो, तो हर शाम सुहानी हो जाए।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे आप जानते हैं, इस हिस्से का प्रोग्राम में हम अक्सर फिल्मी दुनिया का सुनहरी दौर के महान फनकारों के बारे में बयान करती हूँ, जो आज के दौर की कलाकारों का मिसाल है, प्रेरणा है, फोरबिल्ड है। आज हम एक ऐसे ही फनकार के बारे में बयान करेंगे जो अपनी मखमली आवाज़ से हम सब के दिलों में घर कर गई। वो गायिका है सुमन कल्याणपुर। वो कौन थी, उनकी पैदाइश कहाँ हुई और किस खानदान से थी, इन सब पर हम तवज्जो देंगे। पर हम इस महान गायिका की आवाज़ में ये गीत सुनवाते हैं।

अभी आपने सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत सुना जिसके बारे में हम बयान करेंगे। उनकी निजी जिंदगी और संगीत सफर के बारे में हम छोटे रूप में कोशिश करेंगे बयान करने को। सुमन कल्याणपुर कमाल की गायिका थी, जबरदस्त सिंगर थी। उनकी पैदाइश 28 जनवरी 1933 में कोलकाता में हुई थी। सुमन जब 3 साल का था तो उनकी वालदेन हिमादी फैसला किया ढाका में रहने को। उनके वालिद शंकर राव हिमादी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सुपरवाइजर थे। सुमन हिमादी अपनी 5 बहनों और 1 भाई में से सबसे बड़ी थी। माँ सीता हिमादी अपने परिवार के साथ खुश थी। जब सुमन 6 साल की थी तो उनके वालिद की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की वजह से पूरा खानदान मुंबई चले गए। फिर हिमादी परिवार मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में एक अपार्टमेंट में रहते थे। सुमन को बचपन से ही मौसिकी और पेंटिंग में शौक थी। मुंबई में उन्होंने मशहूर सिंध कोलंबा हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की तालीम मुकम्मल किया, पर बचपन में उनका मकसद गायिका बनने को बिल्कुल नहीं थी। सुमन को बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था। स्कूल ख़त्म करने के बाद उनकी सलाहियत मतलब इंतेखरीतैत की वजह से उन्हें मुंबई के बहुत ही मशहूर आर्ट कॉलेज सर जी स्कूल ऑफ आर्ट में पेंटिंग पढ़ने के लिए दाखला मिल गया। बातें आगे बढ़ाने से पहले सुनवाते हैं फिल्म जहां प्यार मिले में से ये गीत।

महान गायिका सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने भी ये गीत सुना। इस गीत से पहले आपने सुना कि सुमन को बचपन से ही पेंटिंग, ड्राइंग और संगीत में शौक रखती थी, क्योंकि वो ढाका और कोलकाता जैसे जगहों पर रहती थी और बंगाली और मराठी जुबान उनके लिए आसान थी। इसी दौरान उन्होंने पुणे प्रभात फिल्म से क्लासिकी संगीत सीखना शुरू किया। म्यूजिक डायरेक्टर और खानदान की करीबी दोस्त पंडित केशव राव भोले से। पर सुमन ने कहा कि शुरू में उनके लिए गाना अहम नहीं था, सिर्फ पेंटिंग और ड्राइंग में दिलचस्पी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मौसिकी में ज्यादा ध्यान देने लगी। फिर सुमन ने उस्ताद अब्दुल खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से बकायदा सीखना शुरू कर दिया और सुमन की छोटी बहन श्यामा हिमादी भी गायिका थी। सुमन हिमादी ने निखतिन अख्तम फैफ्तख में बिजनेसमैन रामानंद सागर कल्याणपुर से शादी कर लिया, जिसके बाद वो सुमन कल्याणपुर के नाम से मकबूल हुई। रामानंद अक्सर अपने बीवी के रिकॉर्डिंग सेशन में साथ जाता था। सुमन कल्याणपुर की एक बेटी है जिसका नाम है चारुल अग्नि और वो शादी के बाद अपने शौहर के साथ अमेरिका चले गए और चारुल अग्नि को भी एक बेटी है और नाम है ऐशियानी अग्नि और बाद में ऐशियानी अग्नि फैसला किया मुंबई वापस जाने को और वहाँ एक एनजीओ खोली अपने नानी सुमन कल्याणपुर के नाम से। हमने आपको सुमन कल्याणपुर की बचपन और पढ़ाई के बारे में इत्तला किया और किससे उसने शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल किया। पर कब उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी, एक गीत के बाद बातें आगे बढ़ाएंगे। गीत जो अब आप सुनेंगे फिल्म श्रीमान सत्यवादी में से लिया है। सुमन कल्याणपुर के साथ थे मन्ना देसाई साहब।

इस गीत से पहले हमने आपको सुमन की बचपन के बारे में बतलाई और उसे किस किस से अपनी मौसिकी की तालीम हासिल किया। सुमन के घर के सभी लोग का झुकाव आर्ट ऑफ मौसिकी की तरफ था, पर बाहर गाने के लिए पाबंदियां थी, सख्त मना था। सुमन ने कहा, फिर भी मैं नेखती तो यह फैफ मेल ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने से इनकार नहीं कर सकी। ये मेरी आवाम के लिए पहली परफॉर्मेंस थी। उसके बाद मुझे गाने के मौका मिला मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में, जो नेहतिन द्रियम फैतह में रिलीज हुआ था। उसी दौरान अदाकार शेख मुख्तर फिल्म मंगू तैयार कर रहा था, जिसके कंपोजर था मोहम्मद शफी शेख मुख्तार। मेरे गाने शुक्राची चांदनी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने मुझसे फिल्म मंगू के लिए 3 गाने गवाए। सुमन ने कहा, कुछ ना मालूम की वजह के बिना पर बाद में संगीतकार ओपे नैयर ने मोहम्मद शफी की जगह ले लिया और मेरे 3 गानों में से सिर्फ एक लोरी कोई पुकारे धीरे से तुझे फिल्म में बरकरार रखी गई। तो इसी तरह मैंने नेखती फिल्म फैतह में रिलीज होने वाली फिल्म मंगू से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। आपने सुना कि सुमन कल्याणपुर की पहली हिंदी सॉन्ग फिल्म मंगू का गीत था। इस फिल्म में अदाकार शेख मुख्तर सुमन से 3 गाने गवाए थे, पर संगीतकार ओपे नैयर 3 गानों में से सिर्फ 1 गीत पसंद किया था। अब हम आपको फिल्म दखाबाज पिया में से ये गीत सुनवाते हैं।

0: संगीतकार चित्रगुप्त और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था आवासी महान गायिका सुमन कल्याणपुर की, जिसके बारे में हम बयां कर रहे हैं। फिल्म मंगू के फौरन बाद सुमन ने मौसिकार नशत की हिदायतकारी में 5 गाने फिल्म दरवाजे में गाई थी, जो नेहतीन फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुआ था, जिस फिल्म का पेशकश था इस्मत चुंगताय और हिदायतकार था शाहिद लतीफ। उसी साल नेहतीन फिल्म फेस्टिवल में सुमन ने मौसिकार ओपी नय्यर के मशहूर गाना मोहब्बत कर लो जी भर लो अजी किसने रोका है गाया था। साथ में थे मोहम्मद रफी साहेब और गीता दत्त जी। जी हाँ, इस गीत में मोहम्मद रफी साहेब और गीता दत्त की आवाज सुनाई देती है, पर सुमन ने कहा उसे इस गीत में गाने के लिए कुछ सोलो पंक्तियाँ, मतलब कुछ सोलो लाइंस मिली थी, लेकिन सिर्फ उसकी खिदमत हासिल की गई कोरस में। इस गीत के बाद सुमन ने दोबारा मौसिकार ओपी नय्यर के लिए कभी नहीं गाई थी। और एक बात ये भी है कि डिस्क पर सुमन का नाम के बारे में जिक्र नहीं किया गया। संगीतकार ओपी नय्यर ने कहा कि कुछ वजह से सुमन के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनका नाम रिकॉर्ड पर आए। शायद इसलिए क्योंकि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो उनके बेटी स्कूल में पढ़ती थी। अब हम आपको फिल्म आर पार में से वो मशहूर गीत सुनवाते हैं, आइए सुने।
1: बात है

फिल्म आर पार में से आपने अभी ये गीत सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफी साहब और गीता दत्त की, लेकिन गौर से सुनेंगे तो गीत में एक और आवाज सुनने को मिलती है। वो आवाज सुमन कल्याणपुर की है, लेकिन रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा नहीं गया। तो जैसे मैंने कहा था, सुमन की वालदैन नहीं चाहते थे कि उनका नाम रिकॉर्ड पर लिखा जाए। अब हम आपको सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ों में ये जुगल गीत सुनवाते हैं। फिल्म जहां आरा में से ये गीत लिया है।

मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी थी, कलाम था महान कवि राजेंद्र कृष्ण का। पर कब और कहाँ तलत महमूद सुमन को पहली बार सुना था? सुमन कल्याणपुर अब गाने में ज़्यादा ध्यान देने लगी और जब कहीं फंक्शन होता था तो सुमन को प्रोग्राम में शामिल करते थे लोग गाने के लिए। इसी तरह तलत महमूद ने एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सुमन कल्याणपुर को गाते हुए सुना और उनकी गायकी से बहुत मुतासिर हुए। तलत महमूद वॉज एरख ऑन द इंद्रक फन हार स्टेम। अब एक बिल्कुल नई आने वाले लड़की उनका कैरियर बुलंदियों पर पहुंचा और फिल्मी दुनिया या कहिए संगीत की दुनिया को चौंका दिया जब तलत महमूद सुमन के साथ डुएट गाने पर राजी हुए, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को अलर्ट होने पर मजबूर कर दिया। मैंने सुमन कल्याणपुर के बारे में बातें की है, अगले हफ्ते मैं सुमन जी के बारे में इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं के आवाज़ में आइए सुने ये गीत।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर के बारे में बयान किया। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं मोहम्मद रफी साहब से ये नगमा।

दिल छू लेने वाली नुहमा पेश था, चित्रगुप्त की मौसिकी थी, कलाम था शायर मजरू सुल्तानपुरी का। हम रहे या ना रहे इस जहां में, गूंजेगी गूंजेगी मोहब्बत की ये सदा तुम्हारे लिए। फैसला कर लिया है मेरे दिल ने, मुझे बस तुम्हारे दिल में ही रहना है।

सदाबहार दो गाना पेश था मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। दुनिया के फिक्र से आज़ाद हूँ मैं, हमें क्या गरज की जहाँ क्या है, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं हम।

कमाल का गीत आपने अभी द ऑल राउंडर किशोर कुमार से सुना, उन्हीं का सजाया संगीत था और इस गीत का तर्स खुद किशोर कुमार ने लिखे थे। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, खौफ की बंदिश नहीं करता, बंदिश मतलब बपैरकिंग, तो धोपिया तू अब तो आ जा।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। कवाली जो आपने अभी सुना कवाल इस्माइल आज़ाद की आवाज़ में थी। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, क्योंकि यू आर के ज़रिए हर तरह के गाने सुनने को मिलते हैं।

अभी आपने हरिहरन अभिजीत और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में ये गीत सुना। तर्ज को लिखे थे आनंद बख्शी ने। कुमार सानू और आका याग्निक से लीजिए पेश है ये दो गाना, जतिन ललित की मौसीकी है, कलाम जावेद अख्तर का।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये जुगल गीत। इसी अंदाज में पेश है अगला गीत। सुनवाने से पहले अर्ज है, एक वो जो नजर अंदाज करता है मुझको, एक मैं हूं कि दिलो जान से दीवाना उसका।

फिल्म 20 साल बाद में से पेश था ये डुएट। लोग चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, पीछे अपनी यादें छोड़ जाते हैं। एक पल में वो आपके साथ है और दूसरे पल में वो आपसे दूर हो जाते हैं। वो तो चले गए ऐ दिल, यादें से उनकी प्यार कर।

गए ऐ दिल यादे से उनकी प्यार कर। डर भरा गीत पेश था राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्स, संगीत से सवारे थे संगीतकार सज्जद ने। अब आए सुने मोहम्मद रफी साहिब से अगला नगमा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी में नगमकार है आनंद बख्शी।

नगमा पेश था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। इसी खूबसूरत अंदाज में लीजिए अगला नगमा पेश है।

सदाबहार नगमा पेश था शायर मजरू सुल्तानपुरी का कलाम था, ओपे नैयर की मौसिकी थी। आशा भोसले की शोखी आवाज़ में पेश है ये गीत।

भरकता गीत पेश था, आवाज थी जी हाँ आशा भोसले की। कितनी रातें बीत गए, कितनी रातें बीत गए, कितने दिन बीत गए, बस नहीं बीता, बस नहीं बीता तो यादों का वो पल, गुजरा हुआ वो पल और गुजरा हुआ वो कल, नहीं बीती, नहीं बीती तो आँखों की नमी और तेरी कमी।

दिल छू लेने वाले गीत पेश था मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे, कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूँ ख्वाब तेरे, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो।

का गीत पेश था, आवाज़ थी किशोर कुमार की। मैं खामोश हूँ तो बस तुम्हारी खुशी के लिए, ये मत समझना कि मेरा दिल नहीं दुखता। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दे।

फिल्म आपकी परछाई में से पेश था ये नगमा। मदन मोहन की मौसिकी थी, कलाम था राजा मेहदी अली खान का। तलत महमूद से आइए सुने ये नगमा।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार, खादिमा थी।

0: बच्ची। ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
2: मारिया!
0: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ योयो?
0: देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
2: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको।

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमा मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा